0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Mitras with Akhiya Gulab right here on Big 106.2. This is The Big Breakfast and chal raha hai the early morning request hour.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: The purely interactive hour of the show is the is that first hour jisme you have to tell me ki kaun sa wo gana hai jo aapki subah banata hai. That is, what is your favorite song of this season? It's a very difficult question to answer actually. Can't choose when it comes to music, right? It's very instinctive. But still, if you got like one song that you think can wake other people up, aapka to आपकी तो नींद दूर भगाता है, लेकिन अगर औरों की नींद भी भगाने के काम आ सकता है, लेट मी नो, गिव मी अ कॉल 800-1062. बाय द वे, आर यू अ लिरिक्स पर्सन और आर यू अ ट्यून्स पर्सन? मतलब आई वन ऑफ दोस पीपल जो कि गाने को सुनते हैं तो कांट फॉरगेट द लिरिक्स, राइट? एंड और आर यू लाइक मी कि यू जस्ट नो द ट्यून, एज सून एज यू हियर द ट्यून यू कैन रिमेंबर इट, बट लिरिक्स के मामले में बिल्कुल डब्बा गोल, जीरो. सो बट इवन इफ यू आर अ ट्यून्स पर्सन लाइक मी, व्हेनेवर यू लिसन टू दिस सॉन्ग यू suddenly become a lyrics person.
2: Oh, luta luta, kisne usko aise luta.
0: Kya gana hai yaar, matlab if ever there was a song made for early morning motivation, it is this one coming up in just a while. And like I said, if you want to be our early morning influencer, influence our playlist, give me a call 800-1062 par.
1: Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है Sid on the Big Breakfast only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग खिल्ली उड़ाते रहते हो, आप मेरा केस लेते हो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: 106.2 Big FM. That's our Insta handle. You got to follow it for all the masti mazak info, infotainment that you can expect. So, kal ek poll question maine dala tha that about this bizarre story out of the world of corporates, out of the world of HR in corporates. Ek HR manager ne apni team ko email kiya ki please thoda chalna phirna kam karo office mein. Isn't that crazy? I mean, ab chalne phirne mein rok tok thodi laga sakte ho yaar. She said ki keep your lap time down to 2 laps per day. या दो बार ऑफिस के चक्कर काटो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे और लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो मैंने कहा कि यू नो द पोल क्वेश्चन वाज दैट लिमिटिंग वॉकिंग टाइम एट वर्क इज दैट रिक्वायर्ड और नॉट. एंड गेस व्हाट, आई मीन 75% से यस इट इज रिक्वायर्ड. मतलब कि एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ थिंग इन ऑफिस. हाँ, 75% ऑफ पीपल से कि नहीं, दिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड. इससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं. जो लोग चल फिर के यू नो बात करते हैं, काम करते हैं, दे हैव टू टॉक वाइल दे सॉरी वॉक वाइल दे टॉक, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. इट्स वेरी गुड दैट द एचआर मैनेजर स्टेप्ड इन. भी तो अच्छी बात की है यार, मजाक मत उड़ाओ. या एंड ओनली 25% से कि नहीं नहीं दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. सो दैट्स आई एम सरप्राइज. आई वाज एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट. बट मैं वापस आऊंगा विद अनदर पोल क्वेश्चन दिस मॉर्निंग. Don't forget to follow us if you don't already. 106.2 Big FM. Here's Mascara from Main Vapas Aunga. This is The Big Breakfast.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 7:21 on the clock और क्या चल रहा है भाई IPL में? IPL खत्म हुए तो थोड़ा टाइम हो गया ना, लेकिन ऑन द फील्ड की बात नहीं कर रहा, ऑफ द फील्ड क्या चल रहा है?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: जितना ड्रामा ऑन द फील्ड होता है उससे कहीं ज्यादा ऑफ द फील्ड होता है बिहाइंड द सीन्स, यू नो, इन दोस नेगोशिएटिंग टेबल्स, बिहाइंड बोर्ड रूम्स, डिसाइड करने के कौन सा प्लेयर कितने में लिया जाए. एंड ड्रामेटिक न्यूज that came in a few hours ago was the fact that those similar looking players Rishabh Pant and Kuldeep Yadav, actually just put Rishabh, think of Rishabh Pant and Kuldeep Yadav together, if there was a Bollywood casting director jo ki do bhaiyon ko cast kar raha ho, to they could actually qualify, right? But the news is centered around these two kumbh ke mele mein bichhde hue. ab to bichhadne wale hain ye log, because Rishabh Pant who 27 crores में LSG के पास गए, वहाँ पर ही कैप्टन द साइड, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर गोयन का जो ओनर है उनके साथ कुछ अटपटी बातें भी हुई, इसकी खबरें मिल रही थी. नाउ ऑल दैट इज कन्फर्म बिकॉज ही इज गॉन बैक टू डेली कैपिटल्स, एंड दैट इट डजंट एंड देयर. ना सिर्फ वो LSG डेली कैपिटल्स गए हैं, ही इज टेकन अ पे कट, और ऐसा वैसा पे कट नहीं, 12 करोड़ रुपए का पे कट लिया है. सो इफेक्टिवली ऋषभ पंत सिंह यार, मैं 27 की जगह 15 करोड़, 12 करोड़ कम में काम करूंगा, लेकिन एलएसजी के लिए मेरे को काम नहीं करना है यार. या वेरी वेरी, यू नो, जो कॉर्पोरेट इमोशंस होते हैं ऑन द क्रिकेट फील्ड एज वेल. बट व्हाट इज द ट्रेड? कुलदीप यादव हैज बीन ट्रेडेड. सो द लेफ्ट आर्म चाइनामैन लेग स्पिनर, ही हैज बीन ट्रेडेड फ्रॉम, सो अब वो दिल्ली से जाएंगे LSG की तरफ. सो ही इज गोइंग बी प्लेइंग फॉर द LSG फ्रॉम नेक्स्ट सीजन. दैट्स द बिग न्यूज दैट्स कमिंग आउट. ऑल्सो देर इज सम न्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ हार्दिक पंड्या. अगर वो मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेले, अगर वो नहीं खेले तो कौन सी टीम के लिए खेलेंगे, इस बात पे थोड़ी और, यू नो, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है. सो दैट्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. इट्स टाइम टू शट अप एंड गेट टू वर्क. सुनिधि चौहान विद द शट अप एंड बाउंस कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग. बिग 106.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsurersMarket.ae.
4: A-Circuit, अपने कार के AC की वाट लग गई। एकदम रापची के AC कहाँ मिलेगा? बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई। अलरास है ना?
4: अलरास बोले तो।
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो AC स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन। हर ब्रांच में सबसे बेस्ट AC स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो AC स्पेयर पार्ट डीलर।
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: When life becomes a game, you start playing kabaddi.
7: AJ, you called me to talk about villains, है ना, Bollywood के villains. आपने कहा नासिर, जिनकी मैंने बात की, जिन्होंने बाबजी का role play किया था, so scary. Apparently, of course, not many people know, but he's a very, very renowned, very, very big name, especially South में, है ना? If there's any one particular villain जिन्होंने play किया हो, ऐसा कोई character that really, really scared you, आप किसको choose करोगे?
8: अभी नया देखेंगे तो अच्छे खन्ना का पूछ सकता हूँ मैं. ऐसे हीरो बहुत खतरनाक धुरंधर में किए थे.
7: हाँ, आई थिंक बॉलीवुड के एक्टर्स जो हीरोज हैं, उनको अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा करना चाहिए. एंड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग हीरोज ऑल द टाइम, आई थिंक दे शुड स्टार्ट प्लेइंग विलन्स, जैसे अक्षय खन्ना ने
8: किया. मल्टी रोल आजकल करे, जैसे हमारे दादा जो है संजय दत्त.
7: I think that you've caught very, very correctly. He's a very, very good actor, whether it is the hero or the villain. Bahut acha role.
8: Yes, yes.
0: Heartfelt and feel-good times. Monday to Friday, 2 p.m. to 5 p.m. The Big Life with Ujjwal. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
9: Hey, jaldi hata, tera khata na. Chal hata.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
10: Morning 7:27 on the clock. Let's take a look at the capital, Abu Dhabi. सबसे पहले आपको हल्का बुल्का ट्रैफिक मिलेगा मुसफा इंडस्ट्रियल पर. इसके अलावा you'll find a bit of unusual traffic aaj when you cross sector 13 Khalifa City, and this is on E20 going towards Rabdan area. Mein kuch 5 se 6 ghanta ka unusual traffic aaj subah milega aapko. E22 par going towards Sheikh Zayed Grand Mosque, also a bit of congestion, and everything else seems to be quite smooth going. Thoda bahut traffic Mazdar City enter karte hue bhi aapko milne wala hai. Chalte hain Dubai Sharjah ki aur, the usual 311 E11 heading southbound going towards Dubai from Sharjah. Expect 4 to 5 minute ka delay. 611 par 3-4 minute ki der heading south going towards Al Aviv. S112 getting a bit congested. Industrial area 6 mein heading east and west in both directions. University City ke aas paas ki sadakon mein bhi aapko thodi busy nazar aayengi. S102 Sharjah Ring Road par bhi aapko milegi 3 se 4 minute ki der.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
11: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस से मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ.
12: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं.
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: वेलकम टू द जंगल से ऊंचा लंबा कद नहीं ऊंचा लंबा कद फॉरएवर बाय द वे 18 चेंजेस के बाद इट्स गॉट अ सीबीएफसी क्लियरेंस
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 18 चेंजेस करवाने के बाद उसको एक क्लियरेंस दिया है सुनाओ यस दिस वीकेंड वेलकम टू जंगल आप देख सकते हैं कि ये मल्टी स्टारर इज द अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर अगर किसी ने बोल दिया तो इसमें मतलब कितने 32 ऑन लास्ट काउंट एक्टर्स हैं वेल नोन एक्टर्स के अलावा कैरेक्टर्स तो और भी ज्यादा उसके अंदर होंगे बट वन पर्सन दैट आई एम रियली गोना मिस आई एम सेइंग इट इवन बिफोर द फिल्म रिलीजेस इज नाना पाटेकर आलू ले लो नो So yeah, but he's going to be in the next part of Welcome. So it's all happening in the world of sequels. This is The Big Breakfast with me, Sid. And don't forget, the show is brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. That's made in Italy. You can cover your gray hair in just 5 minutes with Henna Speedy Easy Hair Color. It's ammonia-free formula enriched with henna extract and argan oil. Gives you vibrant, natural-looking color. Works beautifully, even on thick hair, delivering easy, even application. The Easy Comb Applicator makes coloring as simple as kangi, combing your hair. Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy. Coming up in just a while... दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो दिस इज बिग 106.2 पार्ट ऑफ द फन एशिया नेटवर्क

0: या जितनी बातें होती हैं इस टीनेज सुपरस्टार की उतनी कम तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन आई गॉट टू रिमेंबर दैट ही इज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: मैं सबसे बड़ा क्लीशे हो गया है टू टॉक अबाउट वैभव सूर्यवंशी इन द सेम ब्रेथ. आस्क योरसेल्फ कि यार मैं क्या कर रहा था जब मैं 15 साल का था. बट वैभव सूर्यवंशी Finally got the India T-shirt, right? And मैं आपको सुनाता हूँ that emotional, really emotional video that's doing the rounds about. He's trying to describe the feeling कि जब उसके कमरे पे खटखट हुई and then there was that box containing the India T-shirt, the thing that he's been dreaming of all his life. मतलब life बोले तो 15 साल का तो कुल जमा है ही वो. But here's what he had to say about that magical moment.
2: मतलब words नहीं explain करने के लिए. जिस चीज़ के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ. और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ. और मतलब मैं इस चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. ड्रीम जैसा ही लग रहा था. और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया. मतलब स्माइल कर रहा था मैं. और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते उसे रिएक्शन.
0: क्या बात है यार, इट्स अनबिलीवेबल. आई एम अ 15 ईयर ओल्ड किड गेटिंग टू प्ले फॉर इंडिया, गेटिंग द इंडिया टी शर्ट, ऑल ऑफ हिज ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ऑल द दुआज ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली फाइनली कमिंग ट्रू. Talk about the dua. Here's aapki dua. Total KK classic, one of my favorite KK songs coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com. And we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: InsuranceMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
5: It's game on with Big Ticket.
6: A guaranteed 25 million dirham prize.
5: Five winners of 1 million dirhams each.
6: Plus weekly draws.
5: Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan. Oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
1: The Big Breakfast, brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: वो जो लड़की मेरे लॉन्ड्रोमैट में पिछले हफ्ते कपड़े छोड़कर गई थी, वो लड़की है कहाँ?
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: I don't know about you, but मैं रोज सुबह सोशल मीडिया इस तरह की कहानियों के लिए चेक करता हूँ यार. So there's a grandparent couple in Taiwan, and all this story happened in a couple of years ago, but I just got to know about it. Have you heard this channel called Won't Show As Young? It's a Taiwanese Insta handle, and what the amazing story is here. So this grandparent couple that I was talking about, Taiwanese, they run a laundromat. Laundromat mein hota na ki wo washing machines line se lagi hui hoti hain, and ghar sikka dalna hota hai, and washing machine chalti hai. Yeah, so is laundromat ko own karte hue ye grandparent couple, unke grand सन को एक आइडिया है दैट मेक्स द स्टोरी इवन क्यूटर. लोग अक्सर लॉन्ड्रोमैट में जाकर अपने कपड़े छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, राइट? सो ऐसे ओवर द इयर्स ये कपड़ों की जो गठरी है बनती गई बनती गई बनती गई, एंड द ग्रैंडसन हैड अ फैबुलस आइडिया. ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप हिज ग्रैंडपेरेंट्स, वो द ओनर्स ऑफ द लॉन्ड्रोमैट, इन दोज फॉरगॉटन कपड़े. सो दिस टाइवानीज कपल टर्नड फॉरगॉटन लॉन्ड्री इनटू अ फैशन मोमेंट. इंस्टाग्राम में ऑन दैट हैंडल वॉन्ट शो एज यंग दे स्टार्टेड पुटिंग अप देयर पिक्चर्स. And you know, vintage blazers styled in old hats, scarves, bold prints. And ye photographs lekar Instagram handle pe dal di. And overnight, they got 500,000 followers. If you check it right now, bheek, around 750,000 followers they have on their Insta account. Isn't that absolutely amazing? Yeah, these kinds of stories, what I kind of log on to Instagram for. Yeah. So yeah, amazing stories, SE or coming up. And we've got some fabulous stuff on our Insta page. So don't forget to follow us. 106.2 Big FM, that's our Big FM bol diya maine. 106.2 Big FM, that's our handle on Instagram.
1: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: मीडिया इज अ बज। रणवीर सिंह का 350 करोड़ का डील फॉर धुरंधर। लेकिन सेंड मूव ऑन यार, धुरंधर के बाद रणवीर सिंह क्या कर रहे हैं? ही वाज स्पॉटेड रिसेंटली विद मुकेश छाबड़ा एट हंसल मेहता'स ऑफिस एंड फैंस हैव गॉटन टू स्पेकुलेशन मोड कि कहीं प्रलय का अनाउंसमेंट तो, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी, मूवी प्रलय का अनाउंसमेंट तो नहीं होने वाला है।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: If you're a film fan, then this is the most amazing collab that you're going to hear about today. Papa John's and Toy Story 5 pizzas have landed, bringing movie-inspired flavors to your next meal. Try the Space Ranger Ronnie, loaded with double pepperoni for a bold, meaty bite. Round up your appetite with the Sheriff's Roundup, topped with the barbecue chicken and onions. Reach for the pie and enjoy the delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any two or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza, Papa John's, order now.

0: The song that came right towards the end of Zindagi Na Milegi Dubara. Zindagi Na Milegi Dubara. Lekin ye mauka roz subah aapko milta hai. Big summer surprises.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Al Mayrid Ras Al Khaimah.
0: Two contestants ready with me on the phone line. Sabse pehle, let's say good morning to Banker Shankar. Hello.
2: Hello, Sid. How are you?
0: Very, very good, yaar. Kafi achhe bright aap sound kar rahe hain for a Wednesday morning hump day. Usually, logon ko kafi aalas tras aata hai kaam pe jaane mein. But you're not one of them, huh?
2: अरे काम जाने से पहले अगर आपका कॉल आ जाए तो कौन विल नॉट बी नॉट
0: एक्सेप्ट. लगा दिया भाई, लगा दिया 500 ग्राम अमूल मक्खन राइट आर्म ओवर द विकेट. आई हैव आल्सो गॉट दीप्ति विद मी ऑन द फोन लाइन. दीप्ति, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
0: आज नाश्ते में क्या था?
3: आज नाश्ते में क्या था? ऑमलेट ब्रेड, बट आई हैवंट हैड येट.
0: व्हाई? इट्स 9:13.
3: Yeah, I'm not a breakfast person actually, and I was just on my way back dropping my child. So it was my son who was messaging you, by the way. So he was lucky. Yeah, so I was lucky that he got through.
0: What's your son's name and what class is he in?
3: He's in grade 12 and his name is Manit.
0: Are you grade 12? Oh. अच्छा,
3: yeah,
0: अच्छा,
3: yeah, yeah.
0: Okay, very good, यार. चलो 12th grade के बच्चे भी मुझे सुनते हैं. कुछ बोर्ड एग्जाम के कुछ हो रहे हैं टेंशन वेंशन या क्या?
3: अभी तो फिलहाल नथिंग. दे आर जस्ट प्रिपेयर, दे आर जस्ट गेटिंग अप फॉर द हॉलीडेज एंड अ हेडेक फॉर अस, नथिंग एल्स.
0: यार हमारे टाइम पे तो हॉलीडेज नो हॉलीडेज. 12th में तो एवरी वेकिंग मोमेंट यूज्ड टू बी थिंकिंग अबाउट वन थिंग एंड दैट इज द बोर्ड एग्जाम. बाय ट्यूशन ये वो पता नहीं कितने.
3: या या, दैट इज ट्रू, दैट्स गोइंग ऑन. बट या, इट्स लाइक लास्ट वीक ऑफ स्कूल, सो दे हैव देयर प्लान. एंड क्या, आई नो दैट्स गोइंग ऑन इन द हेड.
0: बातों से मुझे लग रहा है कि दीप्ति ऑलरेडी इज मोर डिजर्विंग ऑफ दिस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस.
3: थैंक यू सो मच.
0: नॉट इफ शंकर हैज समथिंग टू से अबाउट दैट. ओके, सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. शंकर वर्सेस दीप्ति होने वाला है. हो गया बहुत यारी दोस्ती, बहुत हो गई. अब हम लोग कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं. इट्स कॉल्ड द वेकेशन वर्ड कॉन्टेस्ट एंड व्हाट्स गोना हैपन इज 30 सेकंड्स तक मैं टिकर चालू करने वाला हूं एंड इन 30 सेकंड्स आई एम गोना गिव यू सम फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स. ओके, डैश डैश करके मैं बात करने वाला हूं. अगर आपने उन डैशेस को फिल कर दिया, इफ यू आर एबल टू टेल मी द वर्ड. And these words have some connection or the other with a vacation. Chutti, okay. Holiday. It could be a vacation destination. Or it could be something that you pack in your suitcase. All right? Lekin agar aapko lagta hai ki jawab pata hai, to aapko kya karna hai, Shankar?
2: Big Shankar.
0: Big Shankar. And Dipti, if you think you know the answer, what do you have to say?
3: Big Dipti.
0: Big Dipti. All right. Zor se kehna so that I can figure out that who's said their name, use their name like a buzzer first. And then when I give you the opportunity to answer, then give me the answer. Okay? So that sab kuch sahi hai and there is no confusion. Are you guys ready? Shankar, Dipti?
3: Yes, yes.
0: Shankar to matlab lag raha hai ki board exam mein khud baithne wala hai yaar. Shankar, all good?
2: Arre 12th ki bachche ke story laga ke I feel like I'm back in board exams again.
0: And that's not a very good memory, ya? Kuch ludak dindi vandi ud gayi thi, kya hua tha?
4: Ab public mein kya hi batao, Sid bhai.
0: But chalo bhul jao 12th standard ko for a moment. All right, are you guys ready?
3: Yes.
0: Should I start your time?
3: Yep.
0: Your time starts now. First word, SW-M-I-N-. Jaldi karo.
2: SW-M-Swimsuit. Big Shankar swimsuit.
0: Wrong answer. SW-M-I-N-. Correct answer is swimming. Okay, let's move on. Next one. Speed. Okay, I'm going to give you a tiebreaker. Whoever gets this wins this contest. Okay.
3: Okay.
0: P-R-. P-R-.
2: Big Shankar. Party.
0: I'm going to give it to you. It is party. Chalo. Congratulations, Shankar! It could have been party, it could have been Paris as a vacation, it could be anything, but if the word turns out to be a vacation connection, well, Shankar can go on a party on a vacation. Very, very well played, yaar. Shankar, congratulations. Aapka naam draw mein chala gaya, but Dipti, what is your son going to say when he comes back from school and knows that? कि आप इस बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुके हो.
3: सीरियसली सर, वी सो एंग्री.
0: बट यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच, इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. ऑलराइट,
3: एंड थैंक यू सो मच,
0: ऑल द बेस्ट, हैव वंडरफुल वंडरफुल, एंड कीप मैसेजिंग. ऑलराइट, हो सकता है कि शाम के शो में मानसी के साथ आपका नंबर फिर से लग जाए. ऑलराइट,
3: श्योर श्योर, आई ट्राई माय बेस्ट. थैंक यू.
0: द नंबर इज 0543091062. शंकर, कैसा फील कर रहे हो? हाउ बैडली डू यू नीड दिस स्टेकेशन?
2: मजेदार यार, सेड यू आर माय लकी चार्म. जब भी मैं आपके साथ आता हूं तो जीत जाता हूं.
0: अच्छा चलो सही है यार, आपका नाम ड्रॉ में चला गया. एंड नॉट जस्ट दैट, ऑन द स्पॉट राइट नाउ फॉर श्योर यू वन टू वॉक्स टिकट्स एंड एन F&B वाउचर. सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी समर, एंड वी ऑल गॉट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू. ओके,
2: अरे बढ़िया, थैंक यू सो मच,
0: टेक केयर मैन. शंकर हमारे आज के ड्रॉ एंट्रेंट हैं. आप भी ये मौका कुछ छोड़िए मत. ऑलराइट, यू कुड विन अ स्टेकेशन एट द अमेजिंग रिक्सॉस अलमेरीड इन रसल खेमा. इसके लिए आपको करना क्या है, मैसेज करते रहना है, व्हाट्सएप करते रहना है ऑन आर नंबर 0543091062. दैट्स द नंबर 0543091062. जस्ट टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, स्पेस योर नेम एंड कीप व्हाट्सएपिंग. बिग समर सरप्राइजेस बीन मेड पॉसिबल बाय आर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमेरीड, रसल खेमा. ऑल्सो डोंट फॉरगेट दैट टुमारो, कल एक बार फिर आई एम गोइंग बी प्लेइंग दिस वंडरफुल गेम एट द सेम टाइम. One more listener, one of you, is going to get shortlisted in the lucky draw and also win movie tickets and an F&B voucher.

0: 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
6: मॉर्निंग नमस्कार. 20 मिनट ऑन दिस वेडनेसडे की सुबह. 37 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 44%, विंड्स एट 19 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 38 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: I don't know what's wrong with my algorithm on social media. Actually, sab sahi hai. I mean, bade time pass scene recommend karta rehta hai.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: मेरे एल्गोरिथम में जो सीन मुझे रेकमेंड किया देखने के लिए वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ. एंड आई एम गोना आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म एंड यू कुड वॉक अवे विद द टू ओपन मूवी टिकट्स. दिस इज द बिग बॉलीवुड क्विज राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. कौन सी फिल्म में शबनम वाला सीन था?
2: शब्बो कहाँ चली गई? शब्बो
3: अंकल ये कौन है?
4: ये शबनम का आशिक है. शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली.
3: अच्छा अच्छा, बड़े अफसोस की बात.
5: हाँ, बहुत अफसोस की बात. चलिए चलिए,
4: चलो भाई, चलो चलो भाई.
2: सॉरी शबनम.
3: अंकल ये कौन है?
4: ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी.
3: चल चल, बकवास की बातें करता है, टाइम वेस्ट कर रहा है.
5: चलो चलो चलो चलो, अंदर जाओ.
3: ये कौन?
4: अरे यही तो शबनम है.
0: ना सर ना पैर, मतलब इट इज जस्ट वन ऑफ दोस फिल्म्स दैट ऑलवेज जब भी आप देखते हैं आपका माइंड फ्रेश ही होगा. यार कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ? आवाज़ों से आपने पहचान लिया होगा कि कौन थे ऑन स्क्रीन. देयर वाज जावेद जाफरी, अरशद वारसी. अब इससे ज़्यादा क्लू दूंगा तो इट बी अ गिव अवे. यार इफ यू वांट टू ओपन मूवी टिकट्स, कोई भी फिल्म जाकर देखो एट अ टाइम ऑफ योर चूजिंग. गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर. 800-1062, फिल्म का नाम क्या है जिसमें शबनम वाला ये सीन था? 800-1062 पे कॉल करके बताओ. है जवानी तो इश्क होना है. कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Today's weather update: sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances, and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
5: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
7: Mugembo! खुश हुआ।
8: Are you excited? कल से बारिश ही हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बारिश हो।
9: No, please, we need rain.
8: No, I'm a new driver से देश। अभी मैं normal मौसम में गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रही हूँ। Please, मुझ पे बारिश है ना करवाओ। Please.
9: कैब लेके जाओ यार।
8: ये देखो, गाड़ी का रेंट भी बंदा दे, ऊपर से कैब पे भी खर्चा करे। सही बात है, देखो जो दिखता है वो होता नहीं है। मेरे हाल भी वही है जो आपके हैं। नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे बारिश, बिल्कुल नहीं चाहिए। सर, मैं ना बर्षा से आती हूँ और वहाँ पे जो है कभी कभार लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो मैं थोड़ा डरती हूँ उस एरिया में। बट आई जस्ट होप इफ इट रेन्स वी हैव वर्क फ्रॉम होम, दैट्स व्हाट आई कैन मैनिफेस्ट।
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: It's 9:32 on the clock, and let's start with two suspects. 311 E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. 5 to 7 minutes ki there, nothing major out there. Industrial area 6 in Sharjah, also a bit busy. S112 in both directions heading east and west. Beirut Street, Damascus Street pe aapko milega halka bulka traffic. 611 Nasma Central Park cross karke going towards Alavir heading south, you'll find 3-4 minutes ki there. Then good news is E11 E66 dono jagahon par jo traffic tha ab wo clear ho chuka hai. 44 Alkel Road par abhi bhi thoda bahut congestion going towards Business Bay from D3, and the superstar of the show this morning is first Alkel Street, Alkuz Industrial, first aur third ke beech mein aapko traffic milega in both directions.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
11: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: 9:36 and tension ka karne ke liye Sarvanash on the phone line. I've got Avinash. Kya hal chal hai Avinash ji?
2: All good, Sid. All good. गर्मी सह रहा है किसी भी
1: गर्मी तो सहनी पड़ेगी भाई, सहनी पड़ेगी. लेकिन आप तो लॉजिस्टिक्स में हैं, यूर सेलू इन लॉजिस्टिक्स एंड आपकी फील्ड में पास्ट 3-4 महीने काफी स्ट्रेसफुल रहे होंगे.
2: इट हैज बीन स्ट्रेसफुल वर्किंग फॉर 15-16 आवर्स अ डे. नॉट इजी फॉर एनीवन एंड आई एम श्योर माय अदर लॉजिस्टिक्स competitors or even colleagues listening, they would know the pain that they have gone through.
1: Yeah.
2: Getting better slowly and steadily, yes.
1: Yeah, I've got lots of friends in your field and sabke sar se na thode thode baal kam ho gaye hain over the past 3-4 months. So yeah, round of applause for all the people in logistics. Yeah. Just sometimes you got to just stay your ground, right? You just stay your ground and things will kind of get back to being logical in logisticals, right? So Avinash,
2: exactly.
1: On that note, let's get down to business. Jab stress badh jata hai aapki life mein, kaam kaaj mein, to what is your go-to? Do you have like a kind of genre of movies that you watch or what is the theme?
2: I stick to the old school ones. I like stick to Hera Phiri is one of my go-to movies.
1: Yeah.
2: I go to this awkward comedy, which is this Awara Pagal Diwana. I love that scenes of Akshay Kumar and Aftab. These are like very good movies that I like to watch. It's stress busters for me.
1: तभी आपने बिल्कुल सही मौके पे छक्का मारा है, right? Because मैंने आपको फिल्म का जो सीन सुनाया था, that is also in one of these time pass दिमाग घर पे रख के जाओ वाली movies, ना?
2: So, exactly.
1: ये शबनम वाला सीन कौन सी time pass movie में था?
2: धमाल.
1: धमाल, absolutely correct. आपने जीते 2 ओपन मूवी टिकट्स. अब नाउ इट इज अप टू यू, कोई भी मूवी जाकर देखो एट अ टाइम ऑफ योर चूजिंग. लेकिन इज देयर अ मूवी लुकिंग फॉरवर्ड टू जो इज कमिंग अप?
2: नो, बट आई एम येट टू सी दिस मूवी ऑब्सेशन. That is there in the to watch list.
1: भाई.
2: Maybe that would be the one I watch.
1: मेरे बगल
2: में. If it is there in the theater still.
1: Yeah. I went to watch it recently. अभी last weekend ही गया था मैं. So मेरे बगल में there was this couple sitting and every time there was a jump scare, the girl had this habit of dropping, of throwing whatever she has in her, उसके हाथ में जो भी था ना फेंक रही थी. तो कभी पॉपकॉर्न आ रहा है, कभी कभी वो पेप्सी का ढक्कन उड़ते हुए आ रहा है. फाइनली the guy had to say क्या, सॉरी हम लोग जाके ना फ्रंट रो में जाकर बैठ जाते हैं बिकॉज कंट्रोल नहीं कर पा रही है. सो बी प्रिपेयर्ड, ओके, एंड थोड़ा हेलमेट वेलमेट पहन के जाना बिकॉज दैट काइंड ऑफ अ मूवी है.
2: thank you, that's cool.
1: Avinash, pleasure talking to you. Thank you so much for taking part in the contest. Yeah, and have a wonderful, wonderful time ahead. Congratulations.
2: You too. Thank you so much. Thank you.
1: That is Avinash, hamare aaj ke winner. Roz subah I gave you the mocha to flex a bit of Bollywood muscle and walk away with 2 open movie tickets in the big Bollywood quiz.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: लगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: हाँ जी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. ज़ोहरा के साथ आप राइट ऑन पे 106.2. दिस इज द वीर ऑफ बॉलीवुड. आई कीप यू कंपनी ऑल द वे अंटिल 2-4 घंटों के लिए, ब्रिंगिंग यू द हॉटेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक. आल्सो मेकिंग श्योर वी हैव द मोस्ट फन कॉन्वर्सेशंस ओवर हियर. वी ब्राइटन अप योर डे नॉट जस्ट विद म्यूजिक बट विद लाइक यू नो स्टफ दैट यू डिडंट थिंक कि सुबह सुबह सुनने को मिलेगा बट मिल रहा है. नाउ सी, आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू आर यू नो वु लव टू ट्रैवल बट ऑब्वियसली वो खर्चा वगैरह देख के, एक्सपेंस वगैरह देख के आपका मन नहीं करता होगा कि कहीं पर भी जाए बिकॉज यू नो इट्स too heavy on your pocket. But if I take you through a list of the cheapest places for you to travel, places that are very very budget friendly, utna aapka paisa bhi nahi phookna padega aapko, saath hi saath ghoomne ko bhi mil jayega, it's an international trip also. To aisi kuch jagahon ki ek list mere samne hai and I want to take you through that list because I think it's the most useful thing, right, to be able to go to a place without spending that much money or feeling like aapne bahut zyada paisa luta diya aur ab aapke paas kuch paisa nahi bacha account mein. That is something we're going to talk about this are right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood.
3: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: हां जी, गुड मॉर्निंग. 10:14 हो चुके हैं. जोहरा के साथ हो आप इन द फर्स्ट आवर ऑफ द शो द बिग मिक्स ऑल द वे अंटिल 2. इस घंटे में हम डिस्कस कर रहे हैं इफ यू टू हैव बीन प्लानिंग टू यू नो जस्ट स्टेप आउट, गो फॉर अ नाइस ट्रिप एंड जस्ट अनवाइंड रिलैक्स. लेकिन आपको लगता है कि यार जब जब आपने ये प्लानिंग की है किसी ट्रिप की, तब तब इतना वो भार फील हुआ है आपको अपनी जेब पे, बिकॉज इतना पैसा आपका लुटे उस एक ट्रिप पे. बिकॉज भाई, लेट्स एडमिट इट, नन ऑफ दीज ट्रिप्स और हॉलीडेज कम चीप, राइट? ऑल ऑफ देम आर एक्सपेंसिव. उसका मतलब करते करते जितना भी आप बजट करने की कोशिश कर लो, चलो एयरबीएनबी की जगह हॉस्टल ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, बट फिर भी वो महंगा हो ही जाता है घुमा फिरा के. सो इफ यू बीन स्ट्रगलिंग एंड यू फील लाइक यार किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे उतना ना ज्यादा पैसा मुके हमारा, देन लेट मी हेल्प यू अ लिटिल बिट. एक लिस्ट मेरे सामने आई है विच टॉक्स अबाउट द टॉप 10 चीपेस्ट कंट्रीज टू विजिट दिस ईयर. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द टॉप 10 लिस्ट एंड देन यू कैन टेल मी कि इनमें से कोई भी कंट्री आपको इंटरेस्टिंग इनफ लग रही है टू प्लान अ ट्रिप एट. बिकॉज आई फील लाइक देर आर सो मेनी प्लेसेज ऑन दिस लिस्ट दर आर इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल एंड यू नीड टू विजिट. ओके, नंबर 10 पे लेट्स गो. नंबर 10 पे है बॉस्निया, जिसका डेली बजट इज ओनली $35 to $55. डेली बजट है यहाँ, दिस इज लाइक अ रफ बॉल पार्क फिगर कि डेली बजट आपका दिन का, मतलब ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट लेकर, थोड़ा खाना वाना लेकर कितना लगेगा. तो बॉस्निया इज एट नंबर 10 विद डेली बजट ऑफ $35 to $55. नंबर 9 पे है अल्बेनिया, विच इज बिन ऑन माई लिस्ट फॉर सो लॉन्ग. मैं गई थी एक जगह, इट्स कॉल्ड मॉन्टेनिग्रो, इट्स इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल बट इट्स नॉट वेरी चीप, थोड़ा सा महंगा है. तो आई थिंक अल्बेनिया इज अ चीपर वर्जन ऑफ मॉन्टेनिग्रो. सो इफ यू वांट टू गो टू दैट प्लेस विदाउट एक्चुअली गोइंग टू दैट प्लेस, प्लीज बुक अ ट्रिप टू अल्बेनिया. डेली बजट अगेन $35 to $50. नंबर 8 पे है हमारा भारत इंडिया, विच इज अ डेली बजट ऑफ $25 to $40. नंबर 7 पे है श्रीलंका, द सेम बजट $25 to $40, डेली बजट है इसका. नंबर 6 पे है इंडोनेशिया, विच इज सो सो ब्यूटिफुल, सो मेनी पीपल हैव पोस्टेड अबाउट इट, बट दिस इज आउटसाइड बाली. हम इसका डेली बजट है $25 to $40. नाउ टॉप फाइव पे है बोलिविया, विच इज अ $25 to $35 डेली बजट. नंबर 4 पे है कैम्बोडिया. सो मेनी पीपल हैव बिन टेलिंग मी अबाउट कैम्बोडिया, बट पता नहीं वो एक इमेज सा रह जाता है ना, वेन यू हैव नॉट गॉन टू अ प्लेस एंड यू ग्रोन अप थिंकिंग सर्टन थिंग्स अबाउट अ सर्टन प्लेस, तो आपका मन नहीं करता. मेरा ऐसे ही था लाइक अरे कम्बोडिया में क्या है एंड ऑल दैट, बट डेली बजट $22 to $35 ओनली, ब्यूटिफुल प्लेस. नाउ कमिंग टू द टॉप 3, दिस इज आई थिंक एवरी वंस फेवरेट करंटली. नंबर 3 पे है वियतनाम. आई थिंक आउट ऑफ माई 10 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स हैव रिसेंटली विजिटेड वियतनाम. डेली बजट इसका है $20 to $35. नंबर 2 पे है नेपाल, दिस इज ऑन नंबर 2 विद अ डेली बजट ऑफ जस्ट $15 to $25. एंड नंबर 1, आई थिंक द लीस्ट टॉक्ड अबाउट कंट्री राइट नाउ दैट यू मस्ट विजिट बिकॉज इट्स सो नेचुरली ब्यूटिफुल इज लाओस. इसका डेली बजट है $15 to $25 ओनली, दैट इज नंबर 1. आई फील लाइक इसमें से आउट ऑफ द टॉप 10 दैट आई जस्ट यू नो लिस्टेड आउट टू यू, 4 तो मैं डेफिनेटली विजिट करना चाहती हूँ. वॉट डू यू थिंक, विच प्लेस हैज अट्रैक्टेड यू द मोस्ट एंड विच प्लेस डू यू थिंक यू आर गोइंग टू विजिट दिस ईयर?

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: 38 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 43% पे, हाइज होपफुली इससे ज्यादा नहीं जाएंगे एंड लोज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस के।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2।
0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स और बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: Big 106.2.
2: It's game on with Big Ticket.
3: A guaranteed 25 million dirham prize.
2: 5 winners of 1 million dirhams each.
3: Plus weekly draws.
2: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, अगर आप जा रहे हैं E311 लेकर शारजा की तरफ तो आपको मिल सकता है लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक तवार 4 के पास। S102 शारजा रिंग रोड इज आल्सो शोइंग हैवी ट्रैफिक राइट नाउ। दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 15, वहां पे आपको मिल जाएगा 10 से 12 मिनट का डिले। उसके अलावा थोड़ा सा ट्रैफिक D84 पे आपको मिलेगा, उसके अलावा D85 आल्सो शोज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक। अल्कबैसी स्ट्रीट के पास हैवी ट्रैफिक मिल जाएगा E11 नाहदा 1 की तरफ जाते हुए, साथ ही साथ D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक, एंड E44 रासल खोर इंडस्ट्रियल एरिया 1 की तरफ अगर आप जा रहे हैं दुबई हार्टलैंड से होकर तो वहां पे भी मॉडर्न ट्रैफिक मिल सकता है 7 से 8 मिनट का डिले। एनी अदर अपडेट आप बता सकते हैं 4305 पे।
1: सेल्फ ड्राइव डॉट ए नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कहूंगा आई लव यू.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: भाई जिगरा चाहिए. वाओ, आई डिडंट सी व्हाट आई डिड देयर, बट डेफिनेटली चाहिए, स्पेशली इफ यू बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट और यू नो जजिंग पैनलिस्ट और समथिंग ऑन अ शो, एंड वहां पे आप ही की खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके लिए डेफिनेटली जिगरा चाहिए.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: Are you excited? कल से बारिश ही हो सकती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि बारिश हो।
7: No, please, we need rain.
6: No, I'm a new driver, Siddesh. अभी मैं normal मौसम में गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रही हूँ। Please, मुझ पे बारिश ना करवाओ। Please.
7: कैब लेके जाओ यार।
6: ये देखो, गाड़ी का रेंट भी बंदा दे, ऊपर से कैब पे भी खर्चा करे। सही बात है, देखो जो दिखता है वो होता नहीं है। मेरे हाल भी वही है जो आपके हैं। नहीं यार, नहीं चाहिए मुझे बारिश, बिल्कुल नहीं चाहिए। सर मैं ना बर्षा से आती हूँ, और वहाँ पे जो है कभी कभार लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते हैं, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो मैं थोड़ा डरती हूँ उस एरिया में। बट आई जस्ट होप इफ इट रेन्स वी हैव वर्क फ्रॉम होम, दैट्स व्हाट आई कैन मैनिफेस्ट।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: काफी ज्यादा गर्मी, 38 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 46% पर है, हाइज होपफुली इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, एंड लोज वी वर होपिंग कि कम हो जाए, बट 32 से नीचे तो नहीं जाने वाला टेम्परेचर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

यू नो सम पीपल आर नॉट मेंट टू बी पार्ट ऑफ सर्टन जोक्स इन योर लाइफ. मेरे ऑफिस में ऐसे है कुछ जिनसे मैं नॉक नॉक जोक्स क्रैक करने की कोशिश कर रही थी एंड दे डोंट इवन नो द फॉर्मेट एंड इट इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग दैट आई एम फ्रेंड्स विद दीज पीपल. नॉनदलेस इट इज 11:50 ऑन द बिग क्लॉक. वो हेडिंग इन टू आवर नंबर 3 ऑफ द शो. 12 बजने को आए हैं ज़ोरा के साथ. दिस इज द बिग मिक्स. वी विल मेक श्योर टू कंटिन्यू प्लेइंग यू गुड म्यूजिक फॉर एवरी मूड एंड ऑल्सो फन कॉन्वर्जेशन दैट विल ब्राइटन योर डे.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Bollywood.

Of such people in our inner circles, and I did not know कि ऐसे लोगों के एक term भी है, मतलब you know उनको describe जो हम करना चाहते हैं कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हमें लगता है कि ऐसा मतलब word थोड़ी ना exist करता होगा, but करता है. So if you know certain people have certain weird traits, उसका भी एक description है, उसके भी अलग अलग नाम है. That is something I'm going to get into. So if you feel like ऐसे type के लोग आपकी ज़िंदगी में भी है, it'll be interesting for you to know what to actually call them. That is something we're going to talk about right here on Big 106.2. This is the Veer.

0: सैया जी, यो यो हनी सिंह एंड नेहा कक्कड़ विद नटी सैया जी ऑन द बिग मिक्स.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: अरे नटी सैया जी तो कुछ भी नहीं है, हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं दैट यू जस्ट फील लाइक यार ऐसे लोग ऐसे काम, इनको डिस्क्राइब करने के लिए तो वर्ड भी नहीं बने होंगे इंग्लिश डिक्शनरी में, बट नो बने हैं. कोई इंसान ऐसा था जिसने कहा नहीं ये लोग ऐसे जो हैं इतने यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं इनके लिए नाम तो देने ही पड़ेंगे. एंड आई हैव माई सेल्फ जस्ट फाउंड आउट कि यू नो ऐसे लोगों के टर्म्स भी हैं. सो बेसिकली इफ यू हैव समवन इन योर लाइफ हु इज़ मोर ऑफन देन यू नो all the time late because they keep believing that they have more time than they actually do. या फिर आप खुद अगर ऐसे हो एंड आपको लगता है आपके पास टाइम ही टाइम पड़ा हुआ है बट आप हर बार उस वजह से लेट हो जाते हो, you're basically someone who's called a tidsoptimist. Tidsoptimist is someone who thinks they have enough time but is always late because of that thinking. है ना. Coming to the next one, आपकी जिंदगी में ऐसे definitely बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ज्ञान बांटना बहुत पसंद करते हैं even if उनको खुद उस चीज के बारे में zero knowledge हो. So basically someone who shares opinions or advice on any kind of subjects or topics that they do not themselves truly understand, उन लोगों को कहा जाता है ultra crepidarian. It took me some time to practice pronouncing these. अल्ट्रा क्रेपिडेरियंस आर बेसिकली पीपल जो मुफ्त का ज्ञान बांटते हैं और जिनको खुद उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता होता है ना. देन यू हैव समवन हु इज वेरी सिली स्कैटरब्रेन्ड एंड हु इज ऑलवेज टॉकिंग अलॉट ऑफन अबाउट वेरी सिली और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. बकवास जो करते हैं 24/7, जिनको कोई काम नहीं होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोलते हैं फ्लिबर टिजबेट. आई डोंट नो व्हाई इट फील्स लाइक आई एम टेकिंग अ डिग एट माई सेल्फ बट दे आर कॉल्ड फ्लिबर टिजबेट. यस इट टेक्स सम टाइम. फ्लिबर टिजबेट थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का वर्ड है बट ऐसी जिंदगी में आपके बहुत लोग होंगे जिनको बस बकवास करना आता है और पसंद भी है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऐसे भी बहुत लोग मैंने नोटिस किए हैं. अ वॉल फ्लावर इज बेसिकली अ वेरी शाई और इंट्रोवर्टेड पर्सन हु बेसिकली इज अननोटिस्ड एट पार्टीज. ये आई थिंक मैं हूँ बिकॉज मोस्ट पार्टीज यू नो पीपल आर जस्ट सो आउट गोइंग, देर सो सोशल, यू नो देर टॉकिंग टू पीपल, डांसिंग एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. बट देन देर इज समवन जो कोने में खड़ा होगा, जो यू नो अपने में होगा, बस ऑब्जर्व कर रहा होगा, ना ज़्यादा लोगों से बातें कर रहा होगा, उन्हें कहते हैं वॉल फ्लावर. दैट्स सच अ नाइस वे टू डिस्क्राइब समवन दैट दिस इज अ वॉल फ्लावर. नेक्स्ट वन, ये तो मतलब ग्रुप में आपके आउट ऑफ 10 पीपल डेफिनेटली ऐसे 3 तो होंगे ही होंगे. स्मेल फीस्ट बेसिकली वो बंदा है, वो भुक्कड़ आदमी है जो कहीं पे भी किसी भी गैदरिंग या पार्टी में बिन बुलाए आ जाता है जस्ट बिकॉज उसे पता है यहां पे फ्री फूड मिलने वाला है. बिन बुलाए हो या इनविटेशन से ही सही हो, बट विल ओनली शो अप बिकॉज देयर इज फ्री फूड. ऐसे तो डेफिनेटली आप लोगों को जानते होंगे अपनी लाइफ में. नॉनदलेस आउट ऑफ ऑल दीज टर्म्स जो मैंने बताया कि आपकी जिंदगी में जो जो लोग हैं, विच वन डू यू थिंक इज द मोस्ट रिलेटेबल कि यार ये इंसान तो है ही है. एंड आई थिंक दिस वर्ड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज ऑन देम. लेट मी नो 800-106-2 पे. In the meantime, Sukriti Kakkad keeping you company. Pehli bar right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. 12:19 ho chuke hain. I'll be with you all the way until 2, playing you the hottest and the freshest of Bollywood music.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
3: जब मैंने नरेश से पूछा कि नरेश आप काम क्या करते हो तो प्लीज टेल मी वंस अगेन कि आपने क्या जवाब दिया था।
4: I'm working as a head of people and culture.
3: And आप एक्चुअली करते क्या हो?
4: HR.
3: What a fancy term you have found. Is this like a general thing on LinkedIn or ye aapne banaya hai ya ye kya scene hai?
4: No, humne nahi banaya hai. This is very common actually in MNCs and in Western companies.
3: Batana fir se ek bar ke head of people and culture.
4: People and culture.
3: Unbelievable. Very nice. Yeah. Tell me sach batao, itne sare jokes ban gaye HR ke upar ke unhone socha ki naam hi change karte hain thoda sa yaar. Head of people and culture sounds much better yaar. What do you think a media distribution officer is?
4: head of distribution media.
2: No.
3: Guess what?
4: That's what you're doing.
2: No, a paper boy.
3: Okay, ek aur. Who do you think is a director of first impressions?
4: Receptionist
3: is absolutely correct.
0: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: हाँ जी, ट्रैफिक का हाल फिलहाल. इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, लाइट ट्रैफिक शुरू हुआ है तवार 3 से गोइंग ऑल द वे एंटिल S102 शारजा रिंग रोड. इनफैक्ट D97 जंक्शन के पास दो कार एक्सीडेंट हुए हैं ऑन E311. दैट इज कॉजिंग एटलीस्ट अबाउट अ 20 मिनट डिले ऑन दैट रोड. D85 ऑल्सो D95 बगदाद स्ट्रीट गिसेस इंडस्ट्रियल एरिया 2 के पास बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा आपको. एक छोटा सा कार एक्सीडेंट ऑन D85 E11 वाले एग्जिट पे आपको मिल जाएगा, कॉजिंग अनदर 10 मिनट डिले ऑन दैट रोड. E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स नादा 1, वहां पे भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है. एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे.
0: सेल्फ ड्राइव डॉट ए नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिग 106.2. बिग 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurers Market.
1: 12:43 on the big clock. We're heading into the last hour of the show, the big mix with me, Zohra. Until 2 आखिरी घंटे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपके लिए. If you've been waiting कि यार एक फैमिली स्टेकेशन जीतना है, फैमिली के साथ जाना है, चिल करना है, स्ट्रेस नहीं चाहिए एंड यू वॉन्ट इट टू हैपन फटाफट से और एकदम ईजिली, देन दिस इज योर चांस यार. योर चांस टू विन द अल्टीमेट फैमिली स्टे. क्या करना होगा उसके लिए अगले घंटे आपको पता चलेगा. So stick around. My name is Zohra with you until 2.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 38 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड. आज हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे. ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 50% राइट नाउ. लोज विल डिप डाउन टू अबाउट 32 लेटर टुनाइट. गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोरा.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Early in the morning.
2: Come on.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to every day.
3: Mugembo! खुश हुआ
4: फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल आपको मिलेंगे 5 सेकंड मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी यहाँ पे जो है अपना वो सीरियस मिस्टीरियस साइड जो है साइड पे रखना फटाफट खेलने वाला गेम है ठीक है 3 चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं शानन आप खा सकते हैं
5: एप्पल बियर
4: ओके
5: और मटर
4: नॉट बैड क्विकली टेल मी 3 ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं You know, जिससे
5: I like you.
4: अरे तुम्हें
5: time
4: ही नहीं
5: शुरू. Your eyes are beautiful.
4: Time ही नहीं शुरू होने दिया ये मैं कह रही हूँ ये लड़का player है ये लड़का player है.
5: मैंने बताया
4: ना. 1 सेकंड नहीं लगा है. 3 ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो. देखा अब नहीं बताएगा ये पोल नहीं खुलने वाले हैं ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae
6: हाँ जी ट्रैफिक का हाल फिलहाल इफ यू आर ऑन E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लाइट ट्रैफिक शुरू हुआ है तवार 3 से गोइंग ऑल द वे एंटिल S102 शारजा रिंग रोड इनफैक्ट D97 जंक्शन के पास 2 कार एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं ऑन E311 दैट इज कॉजिंग एटलीस्ट अबाउट अ 20-मिनट डिले ऑन दैट रोड D85 ऑल्सो D95 बगदाद स्ट्रीट गिसेस इंडस्ट्रियल एरिया 2 के पास बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगा आपको एक छोटा सा कार एक्सीडेंट ऑन D85 E11 वाले एग्जिट पे आपको मिल जाएगा कॉजिंग अनदर 10-मिनट डिले ऑन दैट रोड E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स नादा 1 वहां पे भी आपको मोटर ट्रैफिक मिल सकता है एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे
0: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ बिग 106.2
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो
8: बहुत मैं अपनी फेवरेट हूं
0: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

हाँ जी, जैस्मिन सैंडलेस ने भी बोल दिया, जाइए सजना, तो मैं क्यों रुकूं, है ना, जाने का टाइम मेरा हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट टू। मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, मेक श्योर गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ज़ोहरा अमीन इज माय हैंडल ओवर देयर। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच, एंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द पीट ऑफ बॉलीवुड। अलो।

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ae.
1: Song of the Hour brought to you by Insurance Market. आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में. मुश्किल तो है, हर चीज में हमें लिखना है कि मुश्किल है, लेकिन अगेन उस मुश्किलों से लड़कर वो जो आपको होराइजन देखना, वहाँ पर you know, आपको आपकी जीत मिलती है. अगर आप कार्ड्स में बिलीव करते हो तो टैरो कार्ड्स में एक कार्ड है हर्मिट का.
2: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: लिटरली जो मतलब होता है हर्मिट का, वो होता है एक बूढ़ा आदमी जो है उसके हाथ में एक लालटेन होता है, और वो लालटेन आपको बेसिकली वो प्रकाश दे रहा है. एट द एंड ऑफ दिस वेरी डार्क टनल, यू नो, देयर कम्स दिस हर्मिट हू नो हू गिव्स यू ऑल द नॉलेज, द विजडम एंड एक्सपर्टीज, एंड टेल्स यू दैट यू नो दिस इज नॉट इट. दिस वेरी डार्क टनल इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिकॉज यू हैव टू सी दिस छोटा सा जो रोशनी का जो केंद्र है, आपको वो देखना जरूरी है, और ऐसी लाइफ भी होती है. सो कीप फॉलोइंग दैट लाइट, यू वुड फाइंड दैट लाइट इवेंचुअली. एंड जहाँ तक खाने की बात है, यहाँ पे तो हमें लाइट या हैवी कुछ भी मिल जाए, बस खाने से मतलब होता है, स्पेशली एट दिस टाइम जब लंचिंग का टाइम होता है. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, ओके, सो द रिडल फॉर फूड ट्रेल गोज लाइक दिस. आई एम रोल्ड ऑन अ बोर्ड देन फ्लिप्ड ऑन द हीट. I'm rolled on the board, then flipped on the heat with layers of ghee to make me a treat. Crispy and golden and round and flaky square. Eat me with pickle or yogurt with care. I'm rolled on a board, then flipped on the heat with layers of ghee to make me a treat. Crispy and golden, a round flaky square. Eat me with pickle or yogurt with care. What am I talking about? 800-1062 is my toll-free number, which is 800-1062. I repeat, 800-1062. Dial in right now and let me see if you can crack this one. Right now, cracking your emotional barriers comes in Rishte. If you've just been a little hurt, or you know, you're in no man's land, you don't know what to do, I think this song will add to that. But what a song. James ki awaaz mein the track from the film Life in a Metro, aapke saath until 5. Ujjwal Khanna, this is The Big Life.

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूजिक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
2: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तो क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, यहाँ पे जो है अपना वो सीरियस मिस्टीरियस साइड जो है साइड पे रखना, फटाफट खेलने वाला गेम है, ठीक है। 3 चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं।
4: एप्पल पियर,
3: ओके,
4: और मटर।
3: नॉट बैड। क्विकली टेल मी 3 ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
4: I like you,
3: अरे
4: I like you, your eyes are beautiful, your hair is beautiful।
3: एक सेकंड नहीं लगा है। 3 ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो। देखा, अब नहीं बताएगा, ये पोल नहीं खुलने वाले हैं। ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM to 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: Big 106.2 पे गुड इवनिंग टू यू। उज्ज्वल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। 37 डिग्री सेल्सियस इज द करंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अबाउट 55%। वी गो डाउन टू अ मिनिमम ऑफ 32 डिग्रीज, फील्स लाइक 44 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। गॉड ब्लेस ऑल द वंस जो कंस्ट्रक्शन साइट पे इस वक्त काम कर रही है, जितने भी लेबर है। आई होप कि जो TLs हैं वो अच्छे हों, जो सुपरवाइजर्स हैं वो अच्छे हों। कीप देम इंटरमिटेंट ब्रेक्स, आई होप कि उन सबको मिल रही हो, एंड जो हमारी तरफ से हो सकता है वो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आर एंड, व्हिच इज वाटर, जूसेस, लबान, जो भी आपको लगता है ठीक वो आप प्लीज करिए। सॉन्ग ऑफ द आवर, दैट्स कमिंग इन नेक्स्ट।
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
1: Song of the Hour, brought to you by Insurance Market. Up listen, our Big 106.2. Good evening to you. Up soon, Rahe The Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: लाइफ में छोटे छोटे सरप्राइजेस मिल जाए तब भी हमें इतनी खुशी मिल जाती है और ये तो इतना बड़ा सरप्राइज है जो आपको मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट सरप्राइज एनीमोर. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट यस अमर बिग 106.2 इज गिविंग यू दिस अल्टीमेट स्टेके ऑन बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सोस अल मायरिड रसल खेमा. गेट रेडी टू यू नो विन दिस फैमिली स्टेकेशन एट द स्टनिंग रिक्सोस अल मायरिड इन रसल खेमा. परफेक्ट टू रिलैक्स टू अनवाइंड टू मेक लॉट ऑफ मेमोरीज टू क्लिक लॉट ऑफ पिक्चर्स टू डू लॉट ऑफ रील्स. यू कैन चिल बाय द पूल फीस्ट ऑन सम ग्रेट फूड एंड बीट द हीट इन स्टाइल. प्लस आपको चांस मिलेगा डेली प्राइजेस जीतने का. Daily, worth 500 dirhams, including movie tickets and F&B vouchers every single day. Now, participate karne ke liye, all you got to do is tune into the Big Breakfast with Sid in the morning and the Big Thrill with Mansi in the evening. And then, of course, you have to type apne WhatsApp mein jaake BSS, which is BSS, Big Summer Surprises, your name, or WhatsApp kijiye use 054-309-1062 pe, which is 054-309-1062 pe. Big Summer Surprises, presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos, Almirid Russell Khema, only on Big 106.2.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
4: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
5: Listen to her every day.
6: Mugambo! खुश हुआ।
7: फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, यहाँ पे जो है अपना वो सीरियस मिस्टीरियस साइड जो है साइड पे रखना, फटाफट खेलने वाला गेम है, ठीक है। 3 चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, शानन आप खा सकते हैं।
8: एप्पल, पियर,
7: ओके,
8: और मटर।
7: नॉट बैड। क्विकली टेल मी 3 ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स जो आप लड़कियों को देते हैं, you know, जिससे
8: I like you,
7: अरे
8: I like you, your eyes are beautiful, your hair.
7: टाइम ही नहीं शुरू होने दिया, ये मैं कह रही हूँ ये लड़का प्लेयर है, ये लड़का प्लेयर है। एक सेकंड नहीं लगा है। 3 ऐसे झूठ शान जो तुम लड़कियों की तारीफ में बोलते हो। देखा, अब नहीं बताएगा, ये पोल नहीं खुलने वाले हैं। ये बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं स्पोर्ट में।
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: Good evening to you, Big 106.2 pe. Traffic update very quickly. I'll say this industrial area 5th ke aaspaas aapko milega traffic. Mohisana 2nd ke aaspaas aapko milega traffic. S102 pe aap hain, Sharjah Ring Road pe. To aapko traffic milne wala hai wahan pe bhi. Agar aap is waqt hain Badari ke aaspaas, thoda sa traffic aapko wahan pe bhi milne wala hai. Al-Khabisi ke aaspaas traffic slow moving milega. Sheikhzad Road looks a little tight right now. DIFC ke aaspaas aapko thoda sa traffic मिलेगा, बाइलेंस में स्पेशली। बात करूं E44 अलखिल रोड, स्लो मूविंग ट्रैफिक, रियली स्लो मूविंग ट्रैफिक राइट नाउ। अगर आप इस वक्त हैं टुवर्ड्स शारजा, दैट्स वेयर यू विल फाइंड ट्रैफिक। D67 के आसपास भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। देयर इज एन एक्सीडेंट आल्सो रिपोर्टेड D72 पे, वहां पे भी आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। एनी द ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4305 व्हिच इज 4305। अप नेक्स्ट कम्स इन, फिर और क्या चाहिए। अरिजीत सिंह की आवाज आपके साथ अंटिल 5, आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is The Big Thrill. मैं हूँ मानसी. सबसे पहले काम की बात. बहुत गर्मी है and if you want to beat the heat in style, it's time for the big summer surprises. Your chance to win a staycation. आशाम आपका नाम ड्रॉ में जाए. But अगर आप गेम जीतते हैं तो नाम तो ड्रॉ में जाएगा, साथ में यू हैव अ चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स एंड ऑफ कोर्स F&B वाउचर्स. वेरी वेरी सिंपल. पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है BSS योर फुल नेम टू 0543091062.
1: पार्टिसिपेट इन द वेकेशन वर्ड गेम कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big summer surprises. Presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixos Almired Ras Al Khaimah.
2: Alright, while you're sending us WhatsApp, so we're also playing the 5-second rule. मजेदार गेम है जो हम हर शाम खेलते हैं. 5 से 6, you get 5 seconds. I give you a few categories. तीन चीजें आपने बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. हाँ जी, sounds very very simple. But जितने भी लोग यहाँ मैदान में उतरे हैं, उन्होंने कहा है ये गेम आसान है नहीं. So if you think you can crack it, give me a call on 800-1062. फिलहाल फोन आया अभी अंजलि का. कह रही पता नहीं आज क्या माहौल है, एकदम डल सा फील हो रहा है. ऑफिस में भी एवरीबडी वॉज वेरी वेरी लेजी. पीपल वर यॉर्निंग, दे वॉन्टेड just go back home. There is something in the air and I am stuck in traffic. Mansi, to kuch karo. I think mujhe lagta hai ki aapko gaano ke roop mein glucose dena bahut zaruri hai Anjali is waqt. And isse better glucose hai nahi mere paas. To is waqt gaadi mein hai. Volume badhao apne aap. Sari susti, sari neend bhag jayegi. Right on Big 106.2, keeping you company until 9. Mansi, this is The Big Thrill.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: Ready, throw!
5: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
6: Thinking about looking and feeling your best? At Zuleika Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zuleika Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: शुरुआत हो गई है फिलहाल 35 मिनट डिले ऑन द शेखजाद रोड स्पेशली नियर बिजनेस बेटी आईएफसी। दिस ट्रैफिक व्हिच इज अ बिट स्लो मूविंग इफ यू ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मरिफ टू मोहिसना। फिलहाल इट शोज 30 मिनट डिले बट वेट एंड वॉच दिस आल्सो ट्रैफिक नियर करामा विद मेहता जद्दाफ। हैवी ट्रैफिक एट द मोमेंट अगर आप अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं एंड ऑफकोर्स हेसा स्ट्रीट इट इज पैक्ड। जेवीटी फर्दर टूवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी आपको काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट यू हैव माई नंबर लेट मी नो 800-1062।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Chill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Score!
4: 25 million dirhams with big ticket.
3: 5 1 million dirham prizes.
4: Plus weekly cash draws.
3: Don't miss your shot.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: Alright, अगर आप शेख जायद पे हैं तो बस मैं ही आपका सहारा हूँ. यहाँ पे 5 second रूल खेलो. काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक है. फिलहाल दिखा रहा है 55 minute डिले, बट ये तो बस शुरुआत है. आगे आगे देखो होता है क्या. दिस हैवी ट्रैफिक नियर फुरजान, इनफैक्ट डिस्कवरी गार्डन से फुरजान. ट्रैफिक ऑल्सो ट्रेलिंग स्लो इफ यू फ्रॉम द हेसी स्ट्रीट गोइंग टुवर्ड्स स्पॉट सिटी ऑल द वे टुवर्ड्स मोटर सिटी. आपको ट्रैफिक मिलेगा. देयर इज पैची ट्रैफिक इफ यू ऑन वर्का मर्डिफ मोहेसना. 45 to 50 minute डिले. हैवी ट्रैफिक एट द मोमेंट इफ यू अराउंड ऊद मैथा एंड करामा. Anything else you'd like to report, let me know. 800-1062 par.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: गुस्से से बोलेगी, नहीं जाऊंगा. प्यार से बोलेगी, मर भी जाऊंगा. इस जमीन और इस आसमान से परे, जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और. बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, you have Big Thrill and Mansi. And of course, it's time for the big summer surprises. If you want to put your name in the draw to win yourself a staycation. And of course, Asha and Jeeta chahte hain open movie tickets and F&B vouchers. You need to register. BSS, your full name to 054-309-1062. WhatsApp karna hai. Filhal, har office mein kuch na kuch aaltu-phaltu rules hote hain. But isse faaltu maine suna nahi hai. So there's this organization that's trending on socials jahan pe HR ने पॉलिसी बनाई है कि इफ यू टेक 1 मिनट एक्स्ट्रा लंच में आपके लंच ब्रेक पे, यू विल गेट 1 अनपेड आवर. मतलब आपकी सैलरी से 1 घंटे का पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा. मतलब 1 मिनट अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिया और लंच टाइम आपने 1 मिनट एक्सटेंड कर दिया तो आपके 1 घंटे के पैसे कट जाएंगे. तो अगर आपके ऑफिस में भी ऐसे कोई आलतू फालतू एच आर रूल्स हैं, डेफिनेटली लेट मी नो 800-1062 पे. वी आर ऑल्सो प्लेइंग द 5 सेकंड रूल, सो गिव मी कॉल ऑन द सेम नंबर. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill and we're playing the 5-second rule. Filhal, reminding you, agar aap staycation pe jana chahte hain, this is your chance to be a part of the big summer surprises. Very, very simple. WhatsApp us your name, register karne ke liye BSS 0543091062 pe. Filhal, joining us is Dipesh and I asked Dipesh, hi Dipesh, kaisa tha aapka din? And he said boring. Kyun boring tha?
3: Vaise, the work was less. So, was getting dizzy and it is too much, getting tired.
2: So, aapke office mein AC nahi chalta, hamare to ekdam kulfi bana ke rakhte hain, itna thanda karke.
3: I'm in sales, so I have to roam around outside, so in the corporate sales. जब तक गाड़ी में हो तब तक ठीक है, लेकिन then when you're going out, so you know that when the गाड़ी जब तक गर्म नहीं होगी तो AC भी थोड़ी distance पे जा रहेगा, तो फिर AC कैसे काम करेगा फिर?
2: I know, जब तक आप दूसरी destination पे पहुंचते तब थोड़ा माहौल बनना शुरू होता है, and then you have to park your गाड़ी again. But Dipesh, what do?
3: I am into corporate, so I'm an ASM.
2: Oh, very nice. So any weird HR rules or HR policies at work? Because I was reading a story wherein this organization, if you take a minute extra during your lunch break, they'll give you one unpaid hour. So आपके ऐसे कोई बहुत सारे आलतू फालतू rules हैं?
3: Few rules आते हैं जो है आलतू फालतू, but I cannot disclose.
2: just give me a hint के no dating policy होगी.
3: नहीं, एक में ऐसा रूल कोई ऐसा कुछ तो डेटिंग पॉलिसी ऐसा कुछ तो है नहीं, थोड़ा बहुत है अभी. कौन सी कंपनी, विच कंपनी परफेक्ट?
2: दैट इज ट्रू. आई ऑलवेज से देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट रिलेशनशिप और अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू हैव टू ऑल्सो इग्नोर अ लॉट. फिलहाल विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी है आपने 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
1: 5-second रूल.
4: ओह या.
2: Quickly tell me 3 Bollywood movies जिनके टाइटल में हम आता है HUM.
3: हम आपके कौन? हम आपके हमारा दिल आपके पास है.
2: हमारा ओह नॉट
3: हमारा दिल आपके पास. हाँ हम ओ
2: हम हमारा हो गया था वो. Moving on, 3 things that are yellow in color and you can eat.
3: Yellow color which you can eat. Banana.
2: Okay.
3: Jelly and
2: jelly. Time खत्म.
3: Sheera.
2: You have to be very quick. 3 things that fly.
3: Housefly, mosquito,
2: things. ये things हैं. Pigeon thing है. बेचारा living being है.
3: Sorry, I said birds. Living.
2: नहीं, things I said. ध्यान से सुनो, आपका ध्यान नहीं है. 3 ऐसे झूठ जो आप लड़कियों को impress करने के लिए बोलते हो.
3: रुमाल आपका. रुमाल गिर गया आपका.
2: What?
3: हम जानता हूँ.
2: आपका रुमाल गिर गया, मैं आपको जानता हूँ. कौन लड़कियाँ बात ही नहीं करती होंगी फिर तो आपसे. बहुत गलत पिकअप लाइन्स आप यूज कर रहे हो दिपेश. यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर पिकअप लाइन्स. 3 रेड फ्लैग्स फॉर यू इन अ रिलेशनशिप.
3: Never lie.
2: Okay.
3: Never बोलना.
2: हो गया टाइम खत्म. क्या
3: है? एक ही बात है.
2: इतनी सारी बात है. 5 ही सेकंड है. 3 things that you do when you're in the washroom.
3: Bathing, toilet brushing.
2: 3 लड़कियों के नाम with the letter S.
3: सुषमा, सिया एंड सकीना.
2: खत्म हो गया. फटाफट खेलने वाला है. तीनों में से कोई है पहचान में? फ्रेंड सिया, सुषमा, सकीना.
3: नहीं. सुषमा जी एक्चुअली सुषमा स्वराज का सुषमा बोल दिया मैंने. सकीना का वो सलीजर का.
2: वेरी नाइस. आई डेफिनेटली यूजिंग द रुमाल वाली लाइन. दैट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू. आई होप यू हैड फन.
3: सेम हियर.
2: Have a great evening and thank you so much. See you.
3: Bye.
2: Yeah, 5-second rule. If you want to play, it's a rule. 800-1062 is the number to dial. And talking about rules, do you any... यही है 5-second रूल. खेलने के लिए एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पे. और फिलहाल रूल से याद आया, आपके ऑफिस में कोई ऐसा आलतू फालतू रूल एचआर ने बनाया है तो मुझे बताओ.

इश्क का पता नहीं, लेकिन काम की बात यह है कि अगर सही टाइम पे अपना बिजनेस आप जो है शुरू करना चाहते हैं, एंड यू बीन थिंकिंग फॉर अ व्हाइल दैट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन थिंग, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, देन दिस इज इट. अजमान फ्री जोन ने इंट्रोड्यूस करा है आपके लिए द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. यस, अजमान फ्री जोन अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. दिस इज ब्रिलियंट न्यूज फॉर ऑल दोस जो अपना एसएमई स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 dirhams. टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया जो ऑलरेडी आपके पास है, बाकी दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट इंक्लूडिंग योर वीजा एंड योर बैंक रिक्वायरमेंट्स. बहुत ही क्विक, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है पूरा प्रोसेस. TNCs do apply, but to get your one-click license, any other information जो आपको चाहिए अभी के अभी visit कीजिए afz.ae. Big 106.2.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
3: Insurancemarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE. Trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
4: Score!
5: 25 million dirhams with big tickets.
4: 5-1 million dirham prizes.
5: Plus weekly cash draws.
4: Don't miss your shot.
5: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: बिग ट्रैफिक शिकायत पर 35 टू 40 मिनट डिले. इट इज पैक्ड. अगर आप गिसेस के आसपास हैं, नहाता गिसेस ऑल द वे टू शारजा, वेरी वेरी स्लो मूविंग. देयर इज बम्पर टू बम्पर सिचुएशन. दुबई गोलसूक फहीदी अबूहेल जाफलिया पूरा पैक्ड है इस वक्त. करामा मनकूल साइड देयर इज आल्सो ट्रैफिक इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स मरीना फर्दर टुवर्ड्स जेवीआर एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर टेकिंग द हेसे स्ट्रीट ऑल द वे आपको ट्रैफिक मिलने वाला है. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
7: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
10: क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
11: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
7: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे,

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill. And of course, mauka aapke paas hai right here, right now, this hour to win yourself some fantastic prizes. To start with, aapka naam hoga shortlist. Aap jeet sakte hain. A beautiful, beautiful staycation. It's time for the Big Summer Surprises. We'll play a fun game here. It's called the Vacation Word Game. Matlab agar bacche hain, aap padhate hain, this should be easy for you. But पार्टिसिपेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए व्हाट्सएप करना बहुत जरूरी है. 0543091062 इज आवर व्हाट्सएप नंबर. BSS योर फुल नेम इस नंबर पे भेजना है. एंड ऑफ कोर्स हूएवर विंस द गेम उनका नाम ड्रॉ में जाएगा फॉर द स्टेकेशन. प्लस आज शाम यू आर वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स कर्सी ऑफ वॉक्स सिनेमाज एंड FNB वाउचर्स.

0: वॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise?

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2
2: The Beat of Bollywood.

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi right here on Big 106.2, a part of Fun Asia Network. And fun ki baat ye hai ke abhi right here, right now, aapke paas mauka hai to beat the heat and style with the Big Summer Surprises. Yes, your chance to win yourself a staycation, aapka naam draw mein jayega. Plus, aap jeet sakte hain on the spot. Couple movie tickets and F&B vouchers, all you need to do is register karna hai and uske liye sirf WhatsApp karna hai, BSS, your name to 054-309-1062, just like Akash and Sarah. Hi.
2: Hi.
3: Hi, how are you, Mansi?
1: Good, good, good. Sarah, meet Akash. Akash, meet Sarah.
2: Hi, Akash.
3: Hi, Sarah.
1: So, aap kya karte hain, Akash?
3: Main research analyst hoon.
1: Business analyst? Ye bana ke to nahi bola na, kyunki do ladkiyan hain.
3: Nahi.
1: What about you, Sarah?
2: I'm an accountant.
1: Very, very nice. All right. So, jumbled words, spellings, isme kaun zyada tez hai, Akash ya phir Sarah?
2: I mean,
1: try karungi. Theek hai, try to karna banta hai because whoever wins, ye aapka naam jayega lucky draw mein and aap staycation jeet sakte hain. And dusra, you'll walk away with couple movie tickets and F&B vouchers. When was the last time, Sarah, aap staycation pe gaye the?
2: Like 3 months ago.
1: अच्छा, and Akash, आप?
3: बहुत टाइम, 3 साल हो गया होगा.
1: अरे अरे अरे, ये क्यों इतना इंतजार? आप ये फ्री में जीतने का ही वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है. बिजनेस एनालिस्ट है ना. चलो, गेम बहुत सिंपल है. इट्स कॉल्ड द वेकेशन वर्ड गेम. आई विल गिव यू अ फ्यू वर्ड्स जिसमें मिसिंग लेटर्स होंगे. दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू अ वेकेशन, टू समर, टू अ बीच हॉलीडे. एंड यू हैव टू जस्ट फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड मुझे बताना है वर्ड कौन सा है. ठीक है?
3: Okay.
1: जवाब देने के लिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलेंगे बिग सारा या फिर बिग आकाश एंड देन आई विल आस्क यू टू आंसर. इफ यू डोंट फॉलो दीज रूल्स, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, इट्स टाइम फॉर द बिग समर सरप्राइजेस.
0: पार्टिसिपेट इन द वेकेशन वर्ड गेम कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, first word hai SH-L-. SH-L-.
2: Big Sarah.
1: Haan, Sarah.
2: Flash.
1: Kya?
2: Flash. S-L-A.
1: Big Akash, yes.
3: Shell
1: is the right answer. 1 point to Akash. Sara, ye kaun sa word hai, lash?
2: I thought the splash of that, you know, beach.
1: Oh, splash. But I said SH-L-.
2: Oh, okay.
1: All right, moving on. Second word. M-L-D-V-.
3: Big Akash.
1: Hanji Akash.
3: Maldives.
1: Arre vaah yaar. ये इतनी फुर्ती में और इतने फटाफट जवाब कैसे दे रहे हो आकाश?
3: वो एक्साइटमेंट है ना, 3 साल से गए नहीं.
1: वैसे पूछने की जरूरत है नहीं तीसरा वाला, बट जस्ट फॉर फन आई विल आस्क. B-L-.
2: बिग सारा.
1: हाँ जी.
2: B-L-.
1: बेल. व्हाई वुड यू नीड अ बेल ऑन अ वेकेशन सारा? इट्स बाली. एंड इसी के साथ आकाश, कंग्रेचुलेशंस, आपका नाम जाता है इन द ड्रॉ फॉर द स्टेकेशन. प्लस राइट हियर राइट नाउ यू आर वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स.
3: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
1: लास्ट टाइम मूवी देखी थी कितने साल हो गए?
3: धुरंधरी देखी थी,
1: वो भी इंडिया में.
2: कंग्रेचुलेशंस.
1: इसको बहुत जरूरत थी यार सारा.
3: थैंक यू.
1: इसको बहुत जरूरत थी. चलो सारे, यू कैन स्टिल कीप ट्राइंग. यू गाइस हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू सो मच.
2: यू टू.
3: थैंक यू. थैंक यू सो मच. बाय.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे hey.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. And 11 saal lage the mujhe license lene mein. And 2014 mein main aayi thi UAE. And 2026 mein maine license liya hai. मुझे लगता है कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना. अब अभी एक और ऐसी खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी. शारजा में पेड पार्किंग के टाइमिंग्स बदल गए हैं एंड ये एक्सटेंड हो गए हैं. आपको सारी डिटेल्स मैं देती हूँ इन जस्ट अ बिट, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग ये सब तभी होना था जब मैंने लाइसेंस लिया है.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: हे मामू
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: 33 degrees, very very humid, 78% पर humidity. Hello, जाएगा around 32.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus

0: खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल मानसी। अगर आप शारजा में रहते हैं या काम करते हैं, ये खबर आपके लिए। शारजा ने पेड पार्किंग आवर्स एक्सटेंड कर दिए हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1st of July, पेड पार्किंग विल बी अंटिल मिडनाइट इन शारजा। सो यस, 1st July से ये रूल इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को और पब्लिक हॉलीडेज को पार्किंग फ्री है, बट अदरवाइज मिडनाइट तक पेड पार्किंग रहेगी। बट किसी ने ना बड़ी अच्छी बात मुझे उस दिन कही कि अपने खर्चे कम मत करो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। और अगर बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो ये क्वार्टरली अप्रेजल से तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए अपना बिजनेस शुरू करना जरूरी है। अगर आप करना चाहते हैं, देन अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है 1-click बिजनेस लाइसेंस। एक्सलेंट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर SME विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 dirhams। टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया, बाकी दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट इंक्लूडिंग योर वीजा, योर बैंक रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही क्विक, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है पूरा प्रोसेस। Terms and conditions do apply, so to get your 1-click license, any further information, visit afz.ae.
0: Big 106.2. Yeah!

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say goodbye, good night. I'll see you tomorrow. Thursday है, Friday है, फिर almost weekend है यार. ज़िंदगी क्या होगी ना, weekend to weekend जीते हैं. But फिलहाल जिंदगी में बिग समर सरप्राइजेस भी है, आप स्टेकेशन जीत सकते हैं. एंड फॉर दैट यू हैव टू रजिस्टर BSS, दैट इज बिग समर सरप्राइजेस. अपना नाम हमें व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर. बिग समर सरप्राइजेस प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमेरीद इन रसल खेमान. यहीं आप स्टेकेशन जीतेंगे. इट्स अ स्टनिंग प्रॉपर्टी. सो गेट सेट मैसेजिंग, दैट इज व्हाट्सएपिंग अस. मीनवाइल आपके पास मौका है टू विन सम वेरी कूल प्राइजेस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज 106.2 Big FM. It is. You can say hi to me. I'm Mansi talking, and I will be talking to you tomorrow. Leaving you with some beautiful music. Stay right here, and I'll see you tomorrow. Good night. Big.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द यूएई कॉल 800-ALFRED-247 Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.